0: बच्चू हमारी को आज्ञा दे रहे हो।
1: तुम्हारी आज्ञा लेनी पड़ेगी।
2: हमारी
0: और का हमारी आज्ञा बिना तो यहाँ से माँ बाप ना रह सको।
1: हाँ
2: बंद तो कटी तुम्हें सच्ची
1: अरे सच्ची वो